0: शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है, यही है, यही तो है वो इनामी।

0: जब तुम नहीं होते तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें ये कहूंगी वो कहूंगी, पर कुछ नहीं कह पाती, बस झगड़ा शुरू करती हूँ।
1: बस बिल्कुल यही हाल मेरा होता है, बस कुछ सोचता हूँ चंदा लेकिन कुछ कह नहीं पाता।
0: कोई बात बिना कहे सुने भी समझ में आ जाती है।
1: कौन सी बात?
0: तुम नहीं जानते।

कर, फिर वही रात है फिर वही है जल, हम समझे गम कर गया सफर, द्वार दिल का खुल गया हाथी निकल गया, तुम रह गई मगर, फिर वही दर्द है फिर वही जिगर, फिर वही रात है फिर वही है जल, हम समझे गम कर गया सफर, द्वार दिल का खुल गया हाथी निकल गया, तुम

समझ दुश्मनों का हाथ खट गया, दो दिलों के बीच से पहाड़ हट गया। हम तो समझ दुश्मनों का हाथ कट गया, दो दिलों के बीच से पहाड़ हट गया। रंग के भारी दिन गए गुजर, द्वार दिल का खुल गया, हाथी निकल गया, तुम रह गई।

मधुर मिलन की चांदनी, लेकिन थोड़ी रह गई कसर, द्वार दिल का खुल गया, हाथी निकल गया, दुम रह गई मगर। फिर वही दर्द है, फिर वही जिगर, फिर वही रात है, फिर वही है डर। हम समझे गम कर गया सफर, द्वार दिल का खुल गया, हाथी निकल गया, तुम रह गई मगर।

0: बताऊं क्यों रहूं खराब, पर तेरा ये हुस्न जैसे डाल में गुलाब। मैंने चाह भूल जाऊं क्यों रहूं खराब, पर तेरा ये हुस्न जैसे डाल में गुलाब। थोड़ा थोड़ा है वही असर, द्वार दिल का खुल गया, हाथ निकल गया, दुम रह गए मगर। फिर वही दर्द है, फिर वही जिगर, फिर वही रात है, फिर वही हसर। हम समझे हम कर गया सफर, द्वार दिल का खुल गया, हाथ निकल गया, दुम रह गई मगर।
1: That was from movie Apradhi Kaun. As the name suggests, this was kind of a suspense mystery whodunit kind of movie. Bimal Roy, the producer, this story was based on a Bengali novel, Kalo Chaya, I think, by Premendra Mitra, the only one of this genre associated with Bimal Roy, by the way. He made serious social message kind of movies, romantic kind of movies, but the crime genre, only one. The next two songs I want to play for you are from movie Begunha, 1957. First one is a duet of Mannade with Lata Mangeshkar, and second one is a Mukesh solo. This movie had Kishore Kumar and Shakila born Badshah Begum, in the main lead role, supported by Helen. By the way, the composer Jaikishan Dayabhai Panchal had a small role. Also supporting actor David was there, Raja Nene, Radha Kishan, Krishnakant, Samson, Mubarak Merchant, etc. The first one was rated Binaka number 31 in 57. Dil albe le pyar ka mausam, chanchal man mein tufaan, aise mein kar lo pyar ho, aise mein kar lo pyar. नील गगन के सारे बादल कर देंगे बदनाम, मैं कैसे कर लूँ प्यार हो, मैं कैसे कर लूँ प्यार। एंड फॉलोड बाय मुकेश सोलो, दिस इज मन्नाड़े लता मंगेशकर ड्यूट। दिस मुकेश सोलो इज ऐ प्यासे दिल बेजुबा, तुझको ले जाऊँ कहाँ। पिक्चराइज ऑन वन हाफ ऑफ द कंपोजर ड्यो जयकिशन। आई होप यू एन्जॉय बोथ द सॉन्ग्स।